0: पहला जेकर सुतक मने है सब ते सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाजन कोए पहला पानी जो है जतरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोई नानक सूत के मन तेरे ज्ञान उतारे तो महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़की सूतक वेखना परत्रे परत रूप कनी सूत कन पहला है तो बारी खाए नानक आदमी बदे जमपुर जाए
0: महला पहला सब सुतक परम है।

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस ककांडिया साधी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जले के वरते सोए महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़ियां काई पाए पौड़ी
2: ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ

0: जब के चतैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के दवैया महामान हूँ के मान है
1: जान की जात महाबुद्ध दा के दत देवकाल के काल महाकाल के काल
0: देवकाल के काल
1: महाकाल के काल
0: देवकाल के काल महाकाल के काल राशि को सर है कि सुध तक परे है कि सिद्ध तक सारे है कामना किसान है कि साधना किसान है बिरकत्ता के बाण है कि बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है कि भूपन को भूप है कि रूप हो को रूप है को मत को प्रार है
1: दिन को बताए गरीब मन को गार के साधन को रस।

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सो करे जेत सर जाए सुत।

0: बता तेरा जी तेरा नाम सत श्री वाहे गुरु
1: बताया पार तेरा मृत परंग परंग ने जापन करतबा जी अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे बस तेरा कर पला
0: तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सजगता नानक दसंदा तुदे अगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत जब लो नहीं पाग लिलारे उदय तब लो प्रमते फिरते बहुतायो काल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जाके सिमरन हुए आनंदा बिन स जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निद पाव बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास ते आवहो ठाकुर कौ मन तन जियरे मुखी शांत पावह हो वह मन शीतल अगन नायंतर तुखी गुर नानक कौ प्रभु दिखाया जल थल त्रिपवन रुखी तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राख हो राखन हार दयाला नानक कर के गोले अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा
ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਆ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨਾਸਰੀ

नेह चल राज कमाओ, जिन तुम भेजे तिन है बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ, सहज तोना नेह चल राज कमाओ, तुम कर आवहु मेरे मीत, तुमरे दुखी

रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कर मंगल वाज नित वाजे अपना खसम निवाजे अस्थिर रहो डोलहो मत कबहो गुर का बचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुख उज्जल दरबार जिनके जी तिनाही फेरे आपे।

0: गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी लाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

जिया अंदर जियो सबकी जान ला, सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला, तेरा कर नंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर।

सत संगत के तूर बिन भगते नहीं सत गुर पाईए बिन पागा नहीं भगत हरे बिन भगती नहीं सतगुर पाईए बिन भागा नहीं भगत हरी।

गए सुखत कहा नानक ती मुख उजले केती छुटी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

राग गुजरी महला चौथा। हर की जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोका राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहा। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तास, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चितवह उद्दम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंतु पाए, ताका रिजक आगै कर धरया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुरप्रसाद परम पद पाया, सुखी काष्ट हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोय न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। उड़ी उड़ आवै सह कोसां, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम पारा। सब त्यावै सब त्या

गुरु बोलाओ जे। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सवासां नाल निभाही।

सर्व सुखों का दाता सतगुर, ताकि सरणी पाइए दर्शन भेटत होत आनंदा। दुख गया हर गाइया सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकि सरणी पाइए दर्शन भेटत होत आनंदा। दुख गया हर गाइया हर रस पीवहो पाई, नाम जपहो नामो आराधहो गुरपुरे की शरणाई। तिस हि प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर

0: गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार बहे गहे की लाद अस गोविंद दास तुहार।
1: Whoa!

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसहु कुरसहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दैसाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दैसाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। सत

जाब ही सारन गही कृपा निद गाज ग्राहते छूटा मेहमान नाम कहा लाओ बरनाओ राम कहत बंदन तेह टूटा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मान तैपि उतर है पारा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मान तैपि उतर है पारा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्ब रखिया गुरदयाला है पै दुख विनाशन है भगत वशलया नाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुत है। बिलावल महला पंजवा ताती वा उना लगाई पार ब्रह्म सरनाई चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखनहार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ पए सहाई। सोहिला राग गौड़ी देव की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरते आखिया करते का होए विचारो तित कर गाव सोहेला सिवरे हो सिर जनहारो तुम गाव हो मेरे निरपाउ का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असी सड़िया जे हो वै साहिब स्यों मेल कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे ओकार छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसया कड़िया पहरा थिती वारी माह हुआ सूरज एको रुते अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती
धूप मर आन लो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ। सहस तब नैन नान नैन है तोहे कौ, सहस मूरत नना एक तोही। सहस पाद बिमल नान एक पाद, गंध बेनो सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस उदय चानण सब मह चानण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योत सुभावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिंग कौ, होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु परया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हरलिब मंडल मंडा हे। कर साधु अंजुलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाउ। साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हों मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावै, जमकाल सहहि सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, ईहा खाट चलहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद कटै दिन सुरैनारे, माना गुर मिल काज सुवारे रहाउ।

रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहाज हो हर गुर ते मनहे बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतर जामी।

कहो सरनाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा। धन धन गुरु राम।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ बाड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय तरे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा वै मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत ना जाने छड़ भय कर बार। सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोले जापे महला पहला, वदी सो जग नानका सच्चा वेखे सोए, सबनी छाड़ा मारियां करता करे सो होए, अगे जात ना जोर है अगे।

साद बलिहार अमृत परवासार अतुल भंडार पार पराही ते पराए अपर अपार पार अपनो पावन कार

0: बहुड़ फिर जोन ना आए।
1: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विदुस्त करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेरी कीम ना परिए ब्रह्मादक सनकार से गुरंत ना पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते।
2: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इकसरना मिले दान संतरेन जेह लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत तेह मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।
3: गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेण गुण रवे सहजातम रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देओ परीक्षित गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नव तन जग छायो।
4: गुरु समरथ गह करिया त्रो बुद्ध सुमत सुमारन को फुनत रमत जा फैरंत सदा अग पुंजत रंग निवारन को मथुरा जन जान कही जिय साच सो और कछु ना बिचारन को हर नाम बोयत बड़ो कल में पाव सागर पार उतारन को।
5: ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक

0: सगल सृष्टि लगे बेतरो।
1: निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाहत बाढ़ सुपर सदा सब बिदरत नागर संत।

हार सिहो प्रीत अंतर मान भेद्या हार बेन रहन न जाई ज्यो मछली बिन नीर बिन सै त्यो नाम बिन मर जाई हार सिओ प्रीत अंतर मन भेद्या हार बिन रहन न जाई ज्यो मछली बिन नीर बिन सै